कृपाल प्रभ मिलह सुभागे, पयो कृपाल सतसंग मिलाया, बूझीत पत कर है पे।

गावन तुधन पवन पणी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुधन चितको पत लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुधन ईश्वर ब्रह्मा देवी सुन तेरे सदा सवारे गावन तुधन इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुधनो सिद समाधि अंदर गावन तुधनो सद विचारे गावन तुधनो जति सती संतोखी गावन तुधनो वीर करारे गावन तुधनो पंडित पढ़ंद्र की सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुधनो मोहन यामन मोहन सुरग मच प्याले गावन तुधनो रतनु पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले गावन तुधनो जोत महाबल सूरा गावन तुधनो खानी चारे गावन तुधनो खंडमंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुधनो गावन ज्योत पवन रत तेरे भगत रसाले और केते तुधनो गावन से मैं चितनावन नानक क्या बिचारे सोए सोए सदा सच साहेब सचा सची नाई हैप्पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष पहावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पत सा सहा पत साहेब नानक रहन रजाई असा महला पहला सुन वड़ा खै सब कोए केवड़ वड़ा डीटा होए कीमत पाए ना कहिया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वडे मेरे साहेबा गाहिर गंभीरा गुणे गहिरा कोई न जाने तेरा खेता केवट चिरा रहो सब सुरती मेले सुरत कमाए सब कीमत मेले कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन न जाए तेरे तिल वडे आई सब सत सब तप सब चंगे आईया सिद्ध पुरख ख्या वडे आया तुदविन सदीक न पाया करम लै नहीं ठाकर आया आखन वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे पंडारा जिस तू दहै तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला

प्यासा तोर बुझण की रह प्यासा तुम्हें छोड़ कोई पर न द्याओ जो पर छाऊ सु तुम ते पाऊं सेवक सके हमारे तरह छुन छुन सतर हमारे मरिए आप हाते मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हूँ जो सदा हमारे पच्चा सिरियस तुझ जीव करिय हो रच्चा रख ले हो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता

जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दात जन उपजायो। अद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार सही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कण को सब गुण सुख दियो सतरण को फल मोह बुद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचल अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान। जब उन करख करा कर तारा प्रजा तरत तब दहे अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ तू मैं मिलत दे धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे आप आपनी बूझ उछारे। तुम सब ही तरहत निरालम जनत भेद भेद अर

दुष्ट दुखित है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके दुष्ट दुखित है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, आप हाते ले हो उबारे। सर्व ठौर मोहो सहाय, दुष्ट दोख ते लहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सभराता, किलबक सकल दहे को हरता, दुष्ट दोख ने कोच करता, श्रेयस दुज जब पय न्याला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावे सोई, दुख नत सब आपत कोई अड़ल, सुने गुंग जो यहे सुरसना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख तरत पौन कटन तिन्नर केर है, हो जो यहाँ की एक बार छोपई को कह, स्वया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनियो, राम रहीम पुराण कुरान, नेक कह मत एक न मनियो, सिमृत शास्त्र वेद सभा, बहु भेद कहा हम एक न जानियो, श्रेयस पान कृपा तुमरी, कर मैं न कहो सब तो है बखानियो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के कहियो तुहार द्वार, पाहे गहे की लाज से गोविंद दास तुहार, रामकली महला तीज आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तो पाया सहज सती, मन बज आवा धाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आइया, शब्दोत गावो हरि केरा, नाम नाम जनी वसाया, काहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तुम मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार हो कारे तेरा, कार्य सब सवरना, सब नागला समरत

जिनको लगी प्यास अमृत से खाए, काल में हो पुण्य गुण गोविंद गाए, सबसे नो कृपाल संभाले साए साए, वीरता कोई न जाए, जियावे तु दया है। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुरु आराधना, जेवा जप गुरु नाओ, नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाओ, सतगुरु सती रतिया दरगे पाए ठाओ, कहनान कृपा करे विश्व जिसनो है वत दे, जग में उत्तम काय, विरले के महला पंजवा।